0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: मिस्टर मारे शुभंग अटॉशन पुदरी अ मैडुरी को तो कहने मानी निचे इरिलिंग विंग चुवो मरोड़ को दोन्यो युगान वकान पेटियान यंगवा Nye yini biwinyo, yitira kanu, riko tere, hankito. Okay.
3: Ajoni wilo wani umega wano bedinge.
2: Omega wilo wani umega wano beditam. Wodo danyi loba tego wai weng. Wodo kati loba nego wai weng. Omega tuwa

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो